0: ये आवाज थी बेदी हसन की।
1: मेंढा इश्क भी तू, मेंढा यार भी तू।
2: अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रफाकत अली खान और आप सुन रहे हैं हांगकांग की शाम। अपने मेजबान आबिद अली बेग के साथ खुश रहिए, एंजॉय किए लाइफ को, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है।
0: सामाइन, गुज़िश्ता इतवार हमने कलामे शायर बदवाने शायर में आपको एक गजल सुनवाई थी।
3: वफा के खूंगर वफा करेंगे ये तय हुआ था, वतन की खातिर जिए मरेंगे ये तय हुआ।
0: इस खूबसूरत गजल के शायर के बारे में दोस्तों ने जानना चाहा। ये गजल थी जनाब हनीफ असदी की। आपका नाम हनीफ अहमद और तखल्लुस हनीफ था। आपने 1919 में शाहजहांपुर में असद शाहजहांपुरी के घराने में आंख खोली। घर के इल्मी और दबी माहौल ने इन्हें भी शायरी की जानिब मायल कर दिया। वो नवी जमात में थे जब उन्होंने पहली गजल कही। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जमाने तालिब इल्मी में मुशायरों में शिरकत करने लगे। अगस्त 1947 में हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और कराची में सुकूनत इख्तियार की। पाकिस्तान नेवी में सिविलियन की हैसियत से मुलाजिम रहे। उन्होंने रेडियो टेलीविजन के अलावा मुल्क भर के मुशायरों में बाकायदा शिरकत की। गजल उनका खास मैदान था। 1971 में हज के बाद नादगुई की जानिब रागिब हो गए। उनका शेर है, मेरे मिजाज पे भारी है अब गजल का मिजाज, जबां खुले तो खुले विधत नबी के लिए। उनके शायशुदा मजमूए कलाम जिक्र खैरुल अनाम और आप के अलावा गजल का एक और सलासी के दो मजमूए मौजूद हैं जो अभी शाये नहीं हुए। वो एक सनद याफ्ता होम्योपैथिक डॉक्टर थे और घर पर ही क्लिनिक करते थे। उनका इंतकाल 19 दिसंबर 2005 को कराची में हुआ। इन मालूमात की फरहमी के लिए हम उनके साहिबजादे आरिफ असदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं।

पाकिस्तान के नामवर गुलूकार मसूद राणा की बरसी 4 अक्टूबर को मनाई गई। मसूद राणा 6 अगस्त 1941 को पैदा हुए थे। उनका ताल्लुक मीरपुर खास से था और उन्होंने रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से गायकी का आगाज किया था। उनकी शोहरत का आगाज फिल्म शरारत के नगमे ए दिल तुझे गुन से ये कैसी शिकायत है से हुआ। इस फिल्म के मौसीकार दीबू भट्टाचार्य थे जबकि फिल्म साज इकबाल शहजाद और हिदायतकार रफीक रिजवी थे। ये फिल्म जुलाई 1963 में रिलीज हुई थी। इससे अगले बरस ही बाबा जी ए चिश्ती ने अपनी फिल्म डाची में मसूद राणा से मशहूर नगमा तांगे वाला खैर मंगदा गवाया। इस नगमे से मसूद राणा की मकबूलियत में मजीद इजाफा हुआ। इसके बाद हमराही, आग का दरिया, दिल मेरा धड़कन तेरी, दामन और चिंगारी, भरिया मेला, रिश्ता है प्यार का, एहसास, दिला दे सौदे, आंसू, भरजाई, अजदा महिवाल, इश्क नचावे गली गली, तकदीर, मुजाहिद, चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ, दिल लगी, बहारो फूल बरसाओ, बंजारन और ऐसी ही लातादाद फिल्मों में उन्होंने अपनी गायकी का जादू जगाया और मुतअद्दिद इजाजात हासिल किए। मसूद राणा ने 2 फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। इन फिल्मों के नाम थे शाही फकीर और 2 मुठियारा। मसूद राणा ने कई मिली नगमात भी गाए जिनमें मियां बशीर अहमद का लिखा हुआ नगमा मिल्लत का पासमा है मोहम्मद अली जिना सरे फहरिस्त है। मसूद राणा का इंतकाल 4 अक्टूबर 1995 को हुआ। वो लाहौर में अल्लामा इकबाल टाउन के कब्रिस्तान

की तेज रफ्तारी को रोका तो है कुछ हमने, जहां की तेज रफ्तारी को रोका तो है कुछ हमने, हमें जो आज करना है वो अगले साल।

बातुर से बदलता रहे, आसानी से शिकारी के हाथ नहीं लगता। जहन में जो मंसूबा हो उसे थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए और देखिए कि इस मौके पर क्या अमल मुनासिब हो सकता है। मुमकिन है किसी मरहले पर कुछ न करना ही उस लम्हे का बेहतरीन अमल हो।